नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। मंत्रिमंडल ने 11 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के उत्पादकता आधारित बोनस को मंजूरी दी। सरकार ने गन्ना किसानों के

0: मुद्दों की जांच और उचित उपाय सुझाने के लिए समिति गठित की। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज बारिश की संभावना। और वेस्टइंडीज ने चौथे T20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हराया, श्रृंखला 2-2 से बराबर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क सुविधाओं को मजबूत करना, ऊर्जा बुनियादी ढांचे में सुधार करना, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना और जल सुरक्षा को बढ़ावा देना है। वे इस अवसर पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री लेह स्थित कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नई यात्रा टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 298 किलोमीटर लंबे निम्मू पदुम दारचा सड़क मार्ग का लोकार्पण करेंगे। लेह के निम्मू को हिमाचल प्रदेश के दारचा से सुदूर जांस्कर घाटी के माध्यम से जोड़ने वाली यह सड़क लद्दाख के लिए एक वैकल्पिक संपर्क गलियारा प्रदान करती है, जिससे श्रीनगर लेह और मनाली लेह मार्गों पर आवागमन और आसान हो जाएगा। श्री मोदी 9 मेगावाट की हनु लघु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दा हनु खालसी टर्मिनेशन लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क और हिम सरोवर परियोजना के तहत 40 गांवों में विकसित 40 जल निकायों का भी उद्घाटन करेंगे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,40,000 से अधिक रेल कर्मियों को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस PLB को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को बताया कि सरकार ने इसके लिए 2009 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटित किया है। पात्र कर्मचारियों को 78 दिनों के लिए अधिकतम 17,951 रुपए का बोनस दिया जाएगा।
2: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस 78 दिनों का बोनस कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
0: इसमें रेलवे लाइन रखरखाव कर्मचारी, लोको पायलट गार्ड, स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, तकनीशियन, पॉइंट्समैन और मंत्रालय के कर्मचारी सहित ग्रुप सी के रेलकर्मी शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को भी 5 वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस कार्यक्रम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना कर दिया गया है।
2: दूसरा बड़ा फैसला लिया गया है वंचितों को वरीयता, जो हमारे वीक सेक्शंस है सोसाइटी के, वल्नरेबल सेक्शंस है, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नेट का एक्सपेंशन, इसे 2031 तक बढ़ाया गया है और टोटल 53,428 करोड़ रुपीस का प्रावधान सोशल सिक्योरिटी नेट के एक्सपेंडेड फॉर्म में किया गया है।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: जालिम लोशन
4: दाग खांच खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: सरकार ने गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री तथा केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री की बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद किया गया है।

0: रिपोर्ट।
1: समिति गन्ने के किसानों के लिए लाभकारी मूल्य में वृद्धि की मांग की समीक्षा करेगी, जिसमें खेती की लागत और अन्य प्रासंगिक विषय शामिल होंगे। यह चीनी उत्पादन लागत, बाजार में मिलने वाले दाम और चीनी मिलों की

0: कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य समझौते में भारत के शामिल होने को मंजूरी दे दी है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार इस समझौते से भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने के अवसर बढ़ाने में सहायता मिलेगी। ये समझौता समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने में भी सहायक होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज विजयवाड़ा के पुन्नमी घाट पर राष्ट्रीय सरस आजीविका मेले का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय स्तर का ये मेला पहली बार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए 1370 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। ये राशि सीधे विद्यार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 5 लाख से अधिक विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए 70 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जारी की गई है। इस अवसर पर उन्होंने 10 AI और रोबोटिक्स लैब, 1500 प्रिंटर, साइंस ऑन व्हील्स और 60 क्रोमबुक जैसी शैक्षिक सुविधाओं की भी शुरुआत की। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 18 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के 4 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री सिंधिया विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित रही है। सेवा और सुशासन के इसी संकल्प के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। आज हमारी इस विशेष श्रृंखला में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि कैसे इस संकल्प को रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम जैसी संस्थाओं के माध्यम से साकार किया गया है, जो रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और उपभोक्ता अधिकारों के लिए काम कर रही है।
2: वर्ष 2016 में संसद ने रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट पारित किया। इसके तहत राज्य रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज की स्थापना की गई। रेरा लागू होने के बाद से किसी भी फ्लैट के बेचने से पहले प्रोजेक्ट को रजिस्टर करना जरूरी है। इसके तहत डेवलपर्स और खरीदारों के बीच के विवाद प्राधिकरण के पास जाते हैं और तय समय सीमा के भीतर सुने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रेरा के माध्यम से ग्राहक और डेवलपर्स के बीच का भरोसा बढ़ा है।
3: इस कानून ने पूरे हाउसिंग सेक्टर अविश्वास और धोखाधड़ी से बाहर निकालने में बहुत बड़ी मदद। इस कानून के बनने से घर खरीदारों को समय पर न्याय भी मिल रहा है। हमने शहरों में अधूरे पड़े घरों को पूरा करने के लिए हजारों करोड़ रुपए का विशेष फंड भी बनाया।
2: गौतम बुद्ध नगर निवासी अनिल तिवारी ने बताया कि रेरा के आने से डेवलपर्स और उपभोक्ताओं के बीच आपसी समझ बढ़ी है। उन्होंने कहा कि रेरा के कारण बिल्डर समय से प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और समय पर लोगों को कब्जा मिलना शुरू हो गया है।
4: डेवलपर और क्लाइंट के बीच में पारदर्शिता होती है। जो पैसे हम लगाते हैं डेवलपर के साथ, वो हमारा सुरक्षित पाया जाता है और हमें कोई भी आपत्ति यदि रियल एस्टेट के माध्यम से होती है तो हम किसी और के पास न जाके हम सीधा रेरा के पास अपनी शिकायत लेके जाते हैं और पूरी तरह से रेरा हमें संतुष्ट करता है।
2: रेरा ने डेवलपर्स और क्लाइंट के बीच के संबंधों को बेहतर बनाया है और खरीदारों के अधिकारों को वैधानिक रूप दिया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: देश भर में आज महिला किसान दिवस मनाया जा रहा है। कृषि और किसान कल्याण विभाग इस अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारतीय कृषि में महिलाओं के योगदान को मान्यता देना है। पुदुचेरी का लीसे फ्रांशे इंटरनेशनल डी पॉन्डिचेरी आज 200 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। ये स्कूल अन्य देशों में अभी भी संचालित सबसे पुराने फ्रेंच स्कूलों में से एक है। एक रिपोर्ट।
5: इस आयोजन में 400 से अधिक पूर्व छात्र हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें कई फ्रांस से आए हैं। आज शाम होने वाले मुख्य समारोह में 1000 से अधिक मेहमानों के शामिल होने की उम्मीद है। इसमें भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, फ्रांसीसी शिक्षा एजेंसी के महानिदेशक अलेक्जेंडर मोरोइस, पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन और मुख्यमंत्री एन रंगसामी भी शामिल होंगे। इस स्कूल की स्थापना ऐसे दौर में हुई थी जब उपनिवेशिक समाज में नस्ल और जाति के आधार पर भेदभाव होता था। बाद में प्रवेश के अवसर बढ़ाए गए और पाठ्यक्रम में तमिल, तेलुगु, मलयालम और बंगाली जैसी भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया। पुदुचेरी से विभिन्न एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: और अब कुछ और अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
6: जी फरहत, शुरुआत करते हैं रियाद स्थित भारतीय दूतावास के परामर्श से। दूतावास ने सऊदी अरब में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों से स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दूतावास ने कहा है कि हवाई हमले की स्थिति में घरों के अंदर रहें और मौजूदा घटनाक्रम से संबंधित वीडियो या समाचार प्रसारित न करें। रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन अब भी निलंबित है। वहीं दम्माम, जेद्दा और मदीना से

0: उड़ाने जारी है। भारतीय विमानन कंपनियों ने इस महीने की 17 तारीख तक सऊदी अरब को आने जाने वाली उड़ाने निलंबित की हैं। उधर हुरमुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय सिंगापुर के दो मालवाहक जहाजों जीएफएस प्राइड और जीएफएस गिसेले पर अज्ञात मिसाइल हमलों से हमला किए जाने की खबर भी है। फिलहाल दोनों जहाजों के सभी चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। इसके अलावा उत्तर कोरिया ने पनडुब्बियों से दागी जाने वाली क्रूज मिसाइलों का परीक्षण भी किया है। हालांकि दक्षिण कोरिया की सेना ने परीक्षणों पर अभी तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। और कोलंबिया ने कल यरूशलम में अपने दूतावास का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही कोलंबिया के नए राष्ट्रपति अबिलार्डो डे ला एस्प्रियेला ने इसराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल कर लिए हैं। तो फरहत, ये थी अब तक की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें।
1: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेल पदक तालिका में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया। भारत ने 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदक अपने नाम किए।
2: एशियाई खेलों में लगातार दूसरी बार शीर्ष पांच देशों में भारत की उपस्थिति विभिन्न खेल विधाओं में देश की बढ़ती सफलता को दर्शाती है। इन खेलों में भारत करिकर्व तीरंदाजी में ऐतिहासिक प्रदर्शन, पुरुष और महिला हॉकी में स्वर्ण पदक और सॉफ्ट टेनिस और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में पहली बार पदक उल्लेखनीय उपलब्धि है। इनमें महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण पदक, 28 वर्षों के अंतराल के बाद एशियाई खेलों की भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक और ग्रीको रोमन कुश्ती में रजत पदक भी शामिल है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: और अब बात खेलों की। वेस्टइंडीज ने कल रात हैदराबाद में खेले गए चौथे टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हरा दिया। दोनों टीमें श्रृंखला में 2-2 की बराबरी पर हैं। अंतिम मैच 17 तारीख को बेंगलुरु में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: ACP-NDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद फरहत। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा दिल्ली से पहले रेलवे कर्मचारियों को तोहफा देने का समाचार कई अखबारों की सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका लिखता है रेलवे कर्मियों को 78 दिन का बोनस, दिव्यांगों को जन्म से मिलेगी पेंशन। अमेरिका में वर्क परमिट खत्म तो 540 दिन का एक्सटेंशन नहीं, नवभारत टाइम्स सहित कई अखबारों की सुर्खी है। छठ पर बिहार जाने वालों की राह आसान करेगी 3 विशेष ट्रेनें, अमर उजाला की खबर है। दैनिक भास्कर ने श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोजिला दर्रे की तस्वीर दी है।
2: धन्यवाद वैष्णवी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश की संभावना। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू लॉन्च 5 मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ अराउंड 3,350 करोड़ रुपीज इन लद्दाख टुडे। Union Cabinet approves productivity link bonus of 78 days for over 11 lakh railway employees. Government forms committee to examine issues raised by sugarcane farmers and recommend appropriate measures. IMD forecasts heavy rain in Haryana, Punjab, Delhi, Keralam, Tamil Nadu and Puducherry today. And in men's cricket, West Indies beat India by 24 runs in the fourth T20 match to level series 2-2. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate and dedicate to the nation 5 major development projects worth around 3,350 crore rupees in Ladakh today through video conferencing. We have more from a correspondent.
5: Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the new passenger terminal building at Kushok Bakula Rinpoche Airport, Leh, built at a cost of rupees 640 crore, spread over 23,000.

0: మెకానిక్ లత. विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि देश अब बदलती वैश्विक व्यवस्था को देखते हुए अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुसार कदम उठा रहे हैं तथा नई साझेदारियां और नए विकल्प तलाश रहे हैं. उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में भारत संयुक्त अरब अमीरात भागीदारी इस दिशा में किए गए प्रयासों का सबसे उत्तम उदाहरण है. अबुधाबी में रायसीना पश्चिम एशिया कार्यक्रम में एक सत्र के दौरान डॉ जयशंकर ने यह बात कही. इसमें संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान भी उपस्थित थे. डॉ जयशंकर ने बहुपक्षवाद के तत्काल सुधार के महत्व का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि बदली वैश्विक व्यवस्था की गति को समझना जरूरी है. डॉ जयशंकर ने श्री नहयान के साथ बैठक में भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया. डॉ जयशंकर ने जॉर्जिया के विदेश मंत्री माका बोतचोरी शिवली से भी मुलाकात की. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज बैंकॉक में ब्रिटेन के वित्त मंत्री जॉन हीली से मुलाकात की. वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने चौथे भारत ब्रिटेन वित्तीय बाजार संवाद, फिनटेक बैठकों और संबंधित आईयूकेएफपी बैठकों के सफल समापन पर चर्चा की. बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने साझा प्राथमिकताओं, रचनात्मक और समावेशी G20 प्रक्रिया की दिशा में ब्रिटेन के साथ मिलकर काम करने की भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया. कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने कहा है कि भारत और कनाडा के बीच व्यापारवार्ता में तेजी आई है. उन्होंने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस साल पूरी होने समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में हुई प्रगति द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी. इस बीच केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और कनाडा के रिश्तों में नए अध्याय की शुरुआत हो रही है. श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चर्चा के दौरान CEPA के माध्यम से द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों के विस्तार पर बातचीत हुई. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है. उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया है. श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही. उन्होंने कहा कि भारत ने गोला बारूद की किस्मों के मामले में 90% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है. उन्होंने बताया कि भारतीय सेना के पास मौजूद गोला बारूद की 175 किस्मों में से 159 स्वदेशी हैं. श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले 12.5 वर्ष में रक्षा क्षेत्र ने न केवल अपनी क्षमताओं का विस्तार किया है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के अपने दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण रणनीतिक बदलाव भी किया है. उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है.
1: ऐसा कहा जाता है कि ओनली डेड है सीन इंड ऑफ वार. यह विचार एक और हमें युद्ध की निरर्थकता और उससे होने वाली

0: व्यापार मानवीय क्षति का एहसास कराता है तो दूसरी ओर यह भी याद दिलाता है कि युद्ध की संभावनाएं कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं होती हैं और हमें हमेशा कठिन परिस्थितियों के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी में यह माना जाता है कि होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। इसी तर्क पर मैं कहता हूं होप फॉर द पीस बट प्रिपेयर फॉर वॉर।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय से पूछा है कि वो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की स्थिति से जुड़ी चिंताओं के समाधान के लिए पाकिस्तान द्वारा उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट कब जारी करेगा। इनमें हत्याओं की जांच और इंटरनेट सुविधा पर लगाई गई पाबंदियां शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति के 81वें सत्र में कल मानवाधिकार उच्चायुक्त के साथ संवाद के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनुज स्वरूप ने ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क सुविधाओं को मजबूत करना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कोशिश कर रही है कि ये लोग बावकार तरीके से जिंदगी जी सकते हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने इस साल 31 मार्च तक मुल्क से नक्सलिज्म का खात्मा करने का पुख्ता आजम कर रखा था। उन्होंने इत्मीनान जाहिर किया कि नक्सलिज्म अब खत्म हो चुका है। बीजेपी की खवातीन अरकान पार्लियामेंट के एक वफद ने आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और जेएनयू में मुबैना जिनसी हरासानी के एक मामले के सिलसिले में कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट बिमोल अकोयजम के मुतालिक एक मेमोरेंडम उन्हें सौंपा। नामाधिकारों से बात करते हुए बीजेपी रुकन पार्लियामेंट दग्गू भाटी पुरंदेश्वरी ने कहा कि जेएनयू की दाखिली कमेटी ने कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट को कसूरवार पाया है। उन्होंने मजीद कहा कि वक्त ने स्पीकर पर जोर दिया कि वो इस मामले को इखलाकियात से मुतालिक कमेटी को भेजें और इस बात का जायजा लें कि आया कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट को लोकसभा मेंबर की हैसियत से खिदमात अंजाम देनी चाहिए या नहीं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता आजम के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। अपनी खसूसी सीरीज के तहत आज हम इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी अहम मुहिम के जरिए इस नजरिए को किस तरह अमली शक्ल दी गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत शहर से वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत सरकार की एक अहम मुहिम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आगाज किया था। यह मुहिम बेटियों को बाइख्तियार बनाने और हरियाणा में सिन्फी तनासुब को बेहतर करने के सिलसिले में काफी अहम साबित हुई। जिन जिले के बीबीपुर गांव के साबिक सरपंच और बेटी के साथ सेल्फी मुहिम शुरू करने वाले सुनील जगलान ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल सभी शोबों में बेटियों की ज्यादा से ज्यादा शमूलियत के सिलसिले में अहम साबित हुई है। वजीराजम नरेंद्र मोदी ने सुनील जगलान की इस कोशिश का तस्करा मन की बात के अपने प्रोग्राम में किया था, जिससे ये एक मुल्कगीर तहरीक बन गई। चंडीगढ़ से अश्विनी कुमार शर्मा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बे।
0: वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत दुनिया भर के तकरीबन 100 ममालिक को अंदरूनी मुल्क तैयार करदा दिफाई साजो सामान बरामद कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की दिफाई बरामदात 2013-14 में महज 686 करोड़ रुपए से 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है। आज नई दिल्ली में टाइम्स नाउ दिफा कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि भारत ने मुख्तलिफ हथियारों के मामले में 90% से ज्यादा खुद किफालत हासिल कर ली है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज साबिक सदर जमहूरिया डॉ एपीजे अब्दुल कलाम को उनके योम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर उन्होंने कहा कि डॉ एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत को एक अहम ताकत बनाने के लिए अपनी नायाब साइंसी महारत को वक्फ किया और सदर जमहूरिया हिंद की हैसियत से आला तरीन जमहूरी अकदार बरकरार रखी। आज लास वेगास में भारत के कुश्ती खिलाड़ी विश्वजीत रामचंद्र मौर्य ने अंडर 23 आलमी चैंपियनशिप में ग्रेको रोमन के फाइनल में चांदी का तमगा जीतकर तारीख रकम की। मर्दों के 55 किलोग्राम के जुमरे में मुकाबला कर रहे विश्वजीत आखिरी सेकंड में 12-13 के मामूली फर्क से जॉर्जिया के कुश्ती खिलाड़ी से हार गए। ये अंडर 23 आलमी चैंपियनशिप के ग्रेको रोमन के फाइनल में भारत का पहला मुकाबला और अब तक का पहला चांदी का तमगा है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 5 बड़े तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और मुल्क के नाम वक्फ किया, जिनकी लागत 3300 करोड़ रूपये से ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस्लाम मजहब इख्तियार करने वाले हिंदू अफराद पसमानदा तबकों के रिजर्वेशन के फवायद का दावा नहीं कर सकते। अदालत ने मद्रास हाई कोर्ट के हुक्म को बरकरार रखा है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि हुकूमत नक्सलिज्म से मुतासर लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने की तमाम तर कोशिशें कर रही है। उसने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4,000 मकानात फराहम किए हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत के दिफाई साजो सामान की बरामदात की मालियत पिछले 13 साल में 38,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। और भारतीय पहलवान विश्वजीत रामचंद्र मौर्य ने लास वेगास में यूनान रोम फाइनल में चांदी का तमगा जीतकर तारीख रकम की है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
2: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headline.

0: मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय पहलवान विश्वजीत रामचंद्र मोरे ने लास वेगास में आयोजित अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन फाइनल में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करने के दौरान ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
1: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
0: इन परियोजनाओं में लेह स्थित कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर नया यात्री टर्मिनल, 9 मेगावाट की हनु लघु पनबिजली परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दा हनु खालतसी ट्रांसमिशन लाइन तथा लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क और हिमसरोवर परियोजना के तहत 40 गांवों में विकसित 40 जलाशयों का उद्घाटन शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इसकी विकास जरूरतों पर अधिक ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि लेह में एक प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। श्री मोदी ने बताया कि लद्दाख की नई खेल नीति के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं।
1: यहाँ के युवाओं ने आइस हॉकी, विंटर स्पोर्ट्स और पर्वतारोहण जैसे क्षेत्रों में अपनी विशेष पहचान बनाई है। मुझे खुशी है कि लद्दाख में नई स्पोर्ट्स पॉलिसी के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि लद्दाख में ग्रीन हाउस खेती को भी बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अब 11,000 ग्रीन हाउस हैं, जिससे किसानों की आय में वृद्धि के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के कारण दिव्यांग हुए जनजातीय समुदाय को कृत्रिम अंग और अन्य सहायता उपलब्ध करा रही है। श्री शाह ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार प्रभावित लोगों के जीवन को फिर से संवारने, उन्हें सहायता देने और सम्मान के साथ जीवन जीने में सक्षम बनाने के लिए प्रयास कर रही है।
2: नरेंद्र मोदी सरकार का दृढ़ संकल्प था कि हम 31/3/2026 के पहले पूरे देश से नक्सलवाद समाप्त करेंगे। मुझे आनंद है आज नक्सलवाद समाप्त हो चुका, मगर नक्सलवाद समाप्त होने से 5 दशकों की पीड़ा को हम समाप्त नहीं कर सकते। वो पीड़ा ने जहाँ जहाँ गांव दिया है वहाँ हमें मरहम लगाना पड़ेगा, उनको खड़ा करने का प्रयास करना पड़ेगा और वो सम्मान के साथ जीवन जी पाए इसकी व्यवस्था कर।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में जनजातीय भाषाओं से संबंधित कार्य समूह की बैठक आयोजित की। ये बैठक हाइब्रिड कार्यशाला के रूप में हुई, जिसकी अध्यक्षता जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव रंजना चोपड़ा ने की। श्रीमती चोपड़ा ने बैठक को संबोधित करते हुए जनजातीय समुदायों तक कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने और उनके प्रभावी क्रियान्वयन में भाषा के महत्व पर जोर दिया। बैठक में देशभर के प्रमुख भाषाविदों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और जनजातीय समुदायों के भाषा विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि हिंदू धर्म से इस्लाम या अन्य गैर हिंदू धर्मों में धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आरक्षण का दावा नहीं कर सकते। मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की पीठ ने कहा कि पूर्व के सामाजिक पिछड़ेपन को धर्मांतरण के बाद आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। एक रिपोर्ट।
4: न्यायालय ने कहा कि गैर हिंदू सामाजिक व्यवस्था में धर्मांतरण स्वतः किसी अधिसूचित पिछड़े वर्ग समुदाय की सदस्यता प्रदान नहीं करता।

0: न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत वैधानिक लाभ केवल किसी व्यक्ति की धर्मांतरण पूर्व स्थिति के आधार पर नहीं दिए जा सकते। न्यायालय ने दोहराया कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति का दर्जा खो देता है। ये फैसला मार्च 2024 के तमिलनाडु सरकार के एक आदेश से संबंधित याचिका के जवाब में आया है, जिसमें दूसरा धर्म अपना चुके लोगों को आरक्षण लाभ देने की मांग की गई थी। उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निजी धार्मिक निकाय वैधानिक अधिकारों का निर्धारण नहीं कर सकते हैं और हिंदू धर्म में पुनः धर्मांतरण के लिए सक्षम अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र तथ्य आधारित विशिष्ट सत्यापन की आवश्यकता होगी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने गोला बारूद की किस्मों के मामले में 90% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
2: ऐसा कहा जाता है कि ओनली डेड हैव सीन एंड ऑफ वॉर। यह विचार एक और हमें युद्ध की निरर्थकता और उससे होने वाली अपार मानवीय क्षति का एहसास कराता है, तो दूसरी ओर यह भी याद दिलाता है कि युद्ध की संभावनाएं कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं होती हैं और हमें हमेशा कठिन परिस्थितियों के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए।
1: रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर, बालाकोट, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक केवल सैनिक कार्रवाई नहीं थी, बल्कि इन्होंने कूटनीतिक निंदा के बजाय सक्रिय कार्रवाई करने के राष्ट्र के दृष्टिकोण में निर्णायक बदलाव को दर्शाया। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य आतंकवाद के हर स्रोत तक पहुंचकर उसका खात्मा करना है। श्री सिंह ने सीमा पार आतंकवाद पर भारत का रुख दोहराते हुए कहा कि पाकिस्तान से होने वाली किसी भी आतंकवादी गतिविधि का और भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल कर्नाटक के कारवार स्थित कदम नौसैनिक अड्डे पर स्वदेशी पोत समर्थक को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये भारतीय नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल होने वाला पहला स्वदेशी बहुद्देशीय पोत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया गया है।
3: सरकार के एक प्रमुख अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा में पानीपत से की थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार के साथ साथ बेटियों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सेल्फी विद डॉटर के जनक जींद जिले के बीबीपुर गाँव के पूर्व सरपंच सुनील जागलान ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की वजह से बेटियों की हर क्षेत्र में भागीदारी बढ़ी है।
4: अगर हम देखें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से पहले हरियाणा का लिंगानुपात कम था, हरियाणा में लड़कियों की साक्षरता दर कम थी, हरियाणा की लड़कियां विश्वविद्यालय स्तर पर बहुत कम पढ़ती थी, लेकिन अगर आज हम देखें तो हरियाणा की लड़कियां करीबन 75% साक्षरता है, जो कि करीबन 64% 2014 से पहले होती थी। उसके साथ ही अगर हम बात करें लड़कियों के स्वास्थ्य को लेकर, कुपोषण को लेकर, वो दर भी लगातार घट रही है। इसके साथ ही हम खेलों में लड़कियों की भागीदारी देखें तो 6200 सभी गांवों में आज के दिन खेल नर्सरियों में लड़कियां पहुंच रही हैं, तो खेलों में लड़कियों की भागीदारी करीबन 60% ज्यादा बढ़ चुकी है। लिंगानुपात जो 879 हरियाणा का होता था वो 920 925 930 तक आज के समय चला जाता है। और खास बात यह रही कि कन्या भ्रूण हत्या पर भी रोक लगी है।
3: उल्लेखनीय है कि सुनील जागलान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन सेवा से देश सेवा की भावना के साथ शुरू किए गए सेल्फी विद डॉटर अभियान का बेटियों के प्रति नजरिया बदलने में बड़ा योगदान रहा। प्रधानमंत्री ने इस अभियान को राष्ट्रव्यापी अभियान में बदल दिया। दूरदराज क्षेत्र

0: से निकला ये अभियान अब एक वैश्विक अभियान बन चुका है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बल दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 से पहले विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में महिला शक्ति की सक्रिय भागीदारी अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी। राष्ट्रपति ने आज विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं।
2: महिलाएं पीछे रह जाते थे आर्थिक रूप से, केवल परिवार का देखभाल, परिवार का सहयोग ही करते थे, छोटे छोटे चीजों के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर करते थे, लेकिन आज वो आत्मनिर्भर बन गए। केवल आत्मनिर्भर नहीं, दूसरों का भी और सहारा देने वाले बन गए। ये केवल उनके इनकम नहीं है, ये देश का आर्थिक समृद्धि, देश का महिलाओं का विकास भी ये समाहित है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि देश अब बदलती वैश्विक व्यवस्था को देखते हुए अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुसार कदम उठा रहे हैं तथा नई साझेदारियां और नए विकल्प तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में भारत संयुक्त अरब अमीरात भागीदारी इस दिशा में किए गए प्रयासों का सबसे उत्तम उदाहरण है। अबुधाबी में रायसीना पश्चिम एशिया कार्यक्रम में एक सत्र के दौरान डॉ जयशंकर ने ये बात कही। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी 21 तारीख तक तेज वर्षा की संभावना है। वहीं कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में सोमवार तक तेज वर्षा का अनुमान है। इस बीच जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आज बर्फबारी हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई। पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार वर्षा और ओलावृष्टि का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेल पदक तालिका में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया है। भारतीय पहलवान विश्वजीत रामचंद्र मोर ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन फाइनल में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अमेरिका के लास वेगास में आज पुरुषों के 55 किलो भार वर्ग के फाइनल में एक रोमांचक मुकाबले में विश्वजीत को मामूली अंतर 12-13 से जॉर्जिया के कोबा कारो मित्से से हार का सामना करना पड़ा। श्री रामचंद्र मोर अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन के फाइनल में पहुंचने और पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, इस्लाम धर्म अपनाने वाले हिंदू पिछड़े वर्ग के आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते। मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार नक्सलवाद से प्रभावित जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पिछले 13 वर्ष में भारत का रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 38,000 करोड़ रुपए हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की प्रशंसा की है। नई दिल्ली में आज एशियाई खेल में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पुरुष और महिला हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है।
1: इस बार एशियन गेम्स कई मायनों में हमारे लिए यादगार रहे हैं। हमारी हॉकी की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने इस बार गोल्ड मेडल जीता है। क्रिकेट में हमारी दोनों टीमों ने लगातार दूसरी बार मेडल जीता है। कबड्डी में भी हमारी पुरुष और महिला दोनों टीमों ने गोल्ड जीता है। इसी तरह तीरंदाजी में 5 गोल्ड, शूटिंग में शानदार प्रदर्शन, बॉक्सिंग में, कुश्ती में बड़ी बड़ी सफलता, एथलेट्स ये नए रिकॉर्ड, 28 साल बाद वेटलिफ्टिंग में मेडल।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद आज ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
2: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि 2047 से पहले विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी। राष्ट्रपति ने आज आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेले का उद्घाटन किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दिल्ली के बाहर पहली बार विजयवाड़ा में आयोजित हो रहा सरस मेला स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पादों की बिक्री के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत GSAT-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो ब्रह्मास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक ए अम्बारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 की मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही।

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के कारण दिव्यांग हुए लोगों को कृत्रिम अंग और अन्य सहायता उपलब्ध करा रही है। श्री शाह ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए। गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इस वर्ष 31 मार्च तक देश से नक्सलवाद समाप्त करने का दृढ़ संकल्प लिया था और अब देश नक्सलवाद मुक्त हो चुका है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश के युवाओं से नई तकनीक अपनाने, कौशल बढ़ाने और 2047 तक विकसित भारत बनाने में योगदान देने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और कानूनी मसौदा तैयार करने का काम जारी है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पीजी 2026 की उत्तर कुंजी और अभ्यर्थियों के उत्तर सार्वजनिक करने की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता की याचिका पर केंद्र सरकार और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधी की पीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए। अमेरिका के लास वेगस में विश्वजीत रामचंद्र मोर ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। चैंपियनशिप में पहली बार किसी भारतीय पहलवान ने पदक हासिल किया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी। अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहा,
1: पर हम तो सब यही डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: ఈనాటి కిసాన్ వాణి ప్రాయోజిత కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుండి వెలువడింది.
4: శబ్ద తరంగాలపై పయనం, ప్రతి ఒక్కరి జీవనంలో అంతర్భాగం, బహుజన హితాయ బహుజన సుఖాయ తన సంకల్పం. ఆకాశవాణి మీతో.

0: श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
1: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इसकी विकास जरूरतों पर अधिक ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि युवाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नई प्रौद्योगिकियों को सीखने के अवसर और दूसरे शहरों में निर्भरता कम करने पर ध्यान दिया जा रहा है।
1: यहाँ के युवाओं को अच्छी शिक्षा मिले, नई टेक्नोलॉजी सीखने का अवसर मिले और उन्हें दूसरे शहरों पर निर्भर न रहना पड़े। लेह में इसलिए एक बड़ा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बन रहा है। आईआईटी जम्मू और आईआईएम जम्मू के सैटेलाइट कैंपस स्थापित करने के प्रस्ताव भी आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इनसे उच्च शिक्षा, रिसर्च और नई स्किल्स के लिए लद्दाख के युवाओं को अपने क्षेत्र में ही बेहतर अवसर मिल सकेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि लेह में एक प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। श्री मोदी ने बताया कि लद्दाख की नई खेल नीति के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत G7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉरपीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक ए अंबारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। G7C उपग्रह के लिए 2,500 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध बेंगलुरु की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ किया गया है। स्वदेशी रूप से विकसित ये संचार क्षमता मजबूत करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 के मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने गोला बारूद मामले में 90% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। सरकार ने 1 नवंबर से उपयोगकर्ताओं के लिए कॉल करने वाले का नाम दिखाने की सेवा अनिवार्य कर दी है। दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 1 नवंबर से सभी सेवा क्षेत्रों में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन CNAP सेवा शुरू करने का निर्देश दिया। इस सेवा के अंतर्गत कॉल करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाता के ग्राहक डेटाबेस में दर्ज नाम कॉल प्राप्त करने वाले के मोबाइल पर दिखाई देंगे। वहीं जिन अंतर्राष्ट्रीय नंबरों को फोन में सेव नहीं किया गया है उनसे आने वाली कॉल पर इंटरनेशनल कॉल लिखा दिखाई देगा। दूरसंचार विभाग ने बताया कि सेवा प्रदाता 4G और इससे आगे के वायरलेस नेटवर्क पर इस सेवा का परीक्षण कर चुके हैं। विभाग ने कहा कि 2G और 3G तकनीक वाले वायरलेस नेटवर्क तथा सार्वजनिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क पर CNAP सेवा शुरू करने के बारे में अलग से विचार किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट की, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत परिसर तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने टिप्पणी की है कि कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता। न्यायालय ने SIR प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने और अनियमितताओं के आरोपों के लेकर राहुल गांधी तथा अन्य विपक्षी नेताओं की अलग याचिका पर निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधु तथा विवेक जोशी से भी जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि इस याचिका को पहले से लंबित मामलों के साथ संलग्न किया जाएगा। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से संबंधित अन्य नोटिस जारी किए हैं। ये सुनवाई SIR में कथित हुई है। राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने सोमवार को अपनी याचिका दायर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक मार्च निकाला था। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से भी SIR से कथित नाम हटाने पर जवाब मांगा है। सरकार ने कहा है कि शुल्क संबंधी बाधाओं के बावजूद इस वर्ष अप्रैल से सितंबर के दौरान अमेरिका को भारत का वस्तु निर्यात बढ़कर करीब $51 अरब हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष इसी अवधि में ये निर्यात $45 अरब 73 करोड़ था। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि प्रस्तावित भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर बातचीत सही दिशा में बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सामान, पेट्रोलियम उत्पादों, इंजीनियरिंग वस्तुओं, रसायनों और कृषि उत्पादों के अधिक निर्यात से इस वृद्धि को समर्थन मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश के युवाओं से नई तकनीक अपनाने, कौशल बढ़ाने और 2047 तक विकसित भारत बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और कानूनी मसौदा तैयार करने का काम जारी है।
2: न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते 20 अक्टूबर को यानी दशहरे के दिन से लागू हो जाएगा। वहीं 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता फरवरी या मार्च 2027 तक लागू होने की उम्मीद है। अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण को भी अंतिम रूप दे दिया गया है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय रणनीतिक व्यापार कमान केंद्र का शुभारंभ किया। यह केंद्र भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की निगरानी, विश्लेषण और प्रबंधन मजबूत करेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस केंद्र को वरिष्ठ नीति निर्माताओं और सरकारी अधिकारियों को भारत के व्यापार प्रदर्शन, निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं, नियामक मंजूरियों, आवेदनों के निपटारे और अन्य कामकाज की एकीकृत जानकारी उपलब्ध कराने, नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम बताएंगे कि गिव इट अप अभियान किया जा रहा है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में गिव इट अप अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान के तहत लोगों से स्वेच्छा से LPG गैस सब्सिडी छोड़ने की अपील की गई थी। इस अभियान के तहत 1,13,00,000 से अधिक LPG उपभोक्ताओं ने अपनी गैस सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ दी। इससे हुई बचत से गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए। इस योजना से खास तौर पर ग्रामीण महिलाओं को लाभ, जो पहले खाना पकाने के लिए लकड़ी और गोबर के उपलों का इस्तेमाल, महिलाओं को अब तक 10,56,00,000 से अधिक मुफ्त LPG कनेक्शन दिए हैं। वर्ष 2015 में दिल्ली इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि गिव इट अप अभियान ने लोगों को एकजुट होकर गरीब परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित किया।
4: वी इंट्रोड्यूस द गिव इट अप कैंपेन सीकिंग द कोऑपरेशन ऑफ द पब्लिक इन वॉलंटरी गिविंग अप कुकिंग गैस सब्सिडीज। वी प्रॉमिस दैट फॉर एवरी कनेक्शन गिवन अप, वन पुअर family currently without gas would be given a connection. This will enable us

0: to liberate many poor women from the health hazards of using firewood. This brings me to an achievement that I think even our worst critics do not dispute. This is the change in the levels of corruption.
1: उत्तर प्रदेश की रहने वाली संजू देवी ने बताया कि गैस चूल्हे से खाना बनाना काफी आसान हो गया है और उन्हें अब खाना बनाते समय धुएं का सामना भी नहीं करना पड़ता।
2: पहले जब चूल्हे पे खाना बनाया करती थी मैं तो मेरे धुएं से चेहरे पे एलर्जी हो जाती थी। अब मुझे इतनी सुविधाएं मिल गई हैं कि अब आराम से खाना बना लेती। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी।
1: गिविट अप अभियान ने लोगों में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा दिया है, साथ ही हर परिवार तक स्वच्छ ईंधन पहुंचाने के सरकार के प्रयासों को मजबूती दी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत वैश्विक खेल महाशक्ति बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। नई दिल्ली में आज वर्ष 2026 के प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों ने तिरंगे का मान बढ़ाया है और आत्मविश्वास से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है।
4: हमारी हॉकी की महिला और खासकर हमारी महिलाओं दूसरी बार मेडल जीता है। जहां पंच वहां परमेश्वर के बाद मैराथन में भारत को मिली सफलता।
3: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
5: घरेलू शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1534 अंक उछलकर 74316 पर पहुंच गया। निफ्टी 375 अंक की तेजी के साथ 22997 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर के मुकाबले 10 पैसे की मजबूती के साथ 95.05 पर बंद हुआ।
3: शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बर्फबारी और निचले तथा मैदानी इलाकों में रुक रुक कर वर्षा हो रही है।
6: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति और कुल्लू के रोहतांग दर्रे सहित ऊंची चोटियों पर आज सुबह से ही रुक रुक कर इलाके उप क्षेत्रों में वर्षा हुई है। रोहतांग दर्रे से अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल तक अब यातायात सुबह 6 बजे से साय 5 बजे तक ही चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन ने पर्यटकों व स्थानीय लोगों को रोहतांग दर्रे पर जाने से पहले ताज़ा आधिकारिक निर्देशों की जानकारी लेने को कहा है। इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के 4 जिलों कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में अंधड़ आसमानी बिजली गिरने, ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
3: मौसम विभाग ने कल कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। कहा, केंद्र शासित प्रदेश का विकास केंद्र की प्राथमिकता। सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर के विरोध में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया। मतदाता सूची से कथित नाम हटाने के मामले में निर्वाचन आयोग से भी जवाब मांगा। रक्षा मंत्रालय ने 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने 1 नवंबर से मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए फोन करने वाले का नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य किया और प्रधानमंत्री मोदी ने एशियाई खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से बातचीत की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट नाइन। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi unveils development projects worth over 3,300 crore rupees in Ladakh, says Union Territories development remains a key priority for centre. Supreme Court issues notices to Congress leader Rahul Gandhi, Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav and others on protest march to Apex Court over alleged SIR irregularities, also seeks poll panel's reply over alleged voter deletions.

0: ये आकाशवाणी है। समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है विशेष कार्यक्रम। रबी फसलों के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में एमएसपी के अपर महानिदेशक डीपी श्रीवास्तव और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
1: नमस्कार श्रोताओं, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस या जिसे हिंदी में कहें न्यूनतम समर्थन मूल्य हमें सुन रहे हैं तो इससे पूरी तरह से परिचित ही हैं, पूरी तरह से फसल बनकर तैयार होती है तो उसका एक मूल्य की गारंटी सरकार द्वारा दी जाती है और ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन होता है जिससे किसानों की आय भी सुनिश्चित होती है। लेकिन सरकार ने बीते वर्षों में सीमित फसलों से हटाकर कई महत्वपूर्ण अन्य फसलों पर भी फोकस करते हुए मिनिमम सपोर्ट प्राइस या एमएसपी की गारंटी दी है और इस दूसरी फसलों धान दलहन जैसी फसलों को लेकर तो आम कार्यक्रम में इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जो लगा अन्य फसलों पर और फसलों के डाइवर्सिफिकेशन को लेकर सरकार लगातार फोकस कर रही है वो कैसे हमारे देश में खेती के एक नए

0: प्रारूप को गढ़ने में महत्वपूर्ण है। और हाल ही में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी फसलों को लेकर विभिन्न फसलों में एमएसपी की घोषणा की है, उस पर भी आज हम विस्तार से कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हैं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में एमएसपी के अपर महानिदेशक डीपी श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर।
1: नमस्कार, धन्यवाद।
0: हम कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय मंत्रिमंडल के हाल ही में जो रबी फसलों को लेकर एमएसपी को लेकर घोषणा हुई है, मंजूरी हुई है, उस पर ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा, जैसे दो बड़ी महत्वपूर्ण फसलें अच्छी खासी बढ़ोतरी हमने इस मंत्रिमंडल के फैसले में देखी है, क्विंटल 675 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, और इसी तरह से सरसों पर भी 413 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। तो इतनी अच्छी बढ़ोतरी सैफ्लावर और सरसों जैसी फसलों को लेकर सरकार ने दी है, आप कैसे देखते हैं इस मंजूरी को, और खासतौर पर जो हमारे देश में फसलों के डाइवर्सिफिकेशन या विविधीकरण को लेकर ये किस तरह से अहम फैसला है?
1: हर साल भारत सरकार 22 फसलों की एमएसपी अनाउंस करती है
0: जी।
1: इसमें 14 खरीफ की फसलें हैं, 6 रबी की फसलें हैं, और जूट और कोपरा की भी एमएसपी अनाउंस होती है। और उसके बाद से जो हमारी प्रोक्योरमेंट एजेंसी है जो खरीदारी करती है, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, जो अनाज और मोटे अनाज है उसकी खरीदारी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा होता है, और इसमें राज्य की एजेंसीज भी इन्वॉल्व होती हैं। और दलहन और तिलहन की खरीदारी एक हमारी स्कीम है पीएम आशा स्कीम, उसके अंतर्गत किया जाता है, और इसमें खरीदारी करने वाली एजेंसी है वो नैफेड और एनसीसीएफ है। और हर साल इन सारी खरीदारी से जो किसान के खाते में भुगतान होता है वो 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का होता है, और उससे हर साल 2 करोड़ से ज्यादा किसान इससे लाभान्वित होते हैं। अभी 30 सितंबर को 6 रबी की फसलों की एमएसपी अनाउंस हुई है, मैं उसका डिटेल बता देता हूँ, जिसमें गेहूं की एमएसपी अब 2610 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है, जो पिछले साल की तुलना में 25 रुपए ज्यादा है। बार्ली, जौ, इसकी एमएसपी अब 2286 रुपए कर दी गई है, जो पिछले साल की तुलना में 136 रुपए ज्यादा है। ग्राम चना, इसकी एमएसपी अब 5958 रुपए कर दी गई है, जिसमें पिछले साल की तुलना में 83 रुपए की वृद्धि की गई है। मसूर की एमएसपी अब 7390 रुपए कर दी गई है, जो पिछले साल की तुलना में 390 रुपए ज्यादा है। मस्टर्ड सरसों, इसकी एमएसपी अब 6613 रुपए कर दी गई है, जो पिछले साल की तुलना में 413 रुपए ज्यादा है। और सफ्लावर कुसुम की एमएसपी अब 7215 रुपए कर दी गई है, जो पिछले साल की तुलना में 675 रुपए ज्यादा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो दलहन और तिलहन की एमएसपी है वो ज्यादा रखी गई है। तो इससे जो विविधीकरण, जैसा आपने जिक्र किया, डाइवर्सिफिकेशन में को प्रोत्साहित करने में काफी मदद मिलेगी।
0: तो आपने जैसा कि विभिन्न फसलों के बारे में बताया कि किन किन फसलों को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी फसलों में एमएसपी की बढ़ोतरी की है, दालों का ही अगर हम जिक्र करें तो सरकार का फोकस है कि जो दालों का उत्पादन है वो देश में बढ़े, और जो हम आयात पर हमारी निर्भरता है वो हमारी कम हो। मसूर की दाल का आपने जिक्र किया, 390 रुपए की बढ़ोतरी हुई है इस बार, और अगर हम देखें तो मसूर की दाल पर अब एमएसपी 92% तक एमएसपी का लाभ किसानों को मिल रहा है, यानी जो हमारा 50% तक इससे ज्यादा का लक्ष्य था उसे लगभग 42% ये ज्यादा है। कैसे आप देखते हैं कि अब दालों की अपनी आत्मनिर्भरता को हम और मजबूत कर रहे हैं और किसान भी इसमें रुझान दिखा रहे हैं उत्पादन में, कितना ये जरूरी है?
1: देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पल्सेज हैं, दाल हैं, उसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी हमारे देश में ही होता है।
0: बिल्कुल।
1: सबसे ज्यादा खपत भी हमारे देश में ही होता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि प्रोटीन का एक बहुत बड़ा साधन दाल है, और खासतौर पर एक बहुत बड़ी आबादी शाकाहारी है।
1: साहित करने की जरूरत है, और बहुत बड़ा इसमें योगदान मिलता है, इससे प्रोत्साहन मिलता है कि किसान भाई अधिक से अधिक दल भी एक दलहन मिशन चला रही है, जिसके अंतर्गत जो 3 तूर, उड़द और मसूर है, इसकी खरीदारी अब 100% भारत सरकार करेगी, नैफेड करेगी। तो इन सारे बढ़ी हुई एमएसपी और जो दलहन मिशन है, इससे पल्सेज को प्रमोट करने में काफी मदद मिलती है, और इससे हमें उम्मीद है कि किसान भाई भी इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे, इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, और हमारा देश भी इसमें आत्मनिर्भर होगा, और किसान को भी अपनी फसल का उचित लाभ मिलेगा।
0: क्योंकि गेहूं जो ऐसी फसल है भारत की, हमारी कहें तो भारत की खाद्य सुरक्षा का एक बहुत बड़ा आधार है, और आप किसानों को गेहूं की जो लागत है उसका रिटर्न अगर हम देखें तो 106% के आसपास अब मिल रहा है
1: जी।
0: तो गेहूं किस तरह से भारत की खाद्य सुरक्षा का एक बहुत बड़ा आधार है, और सरकार के जो प्रोत्साहन लगातार है किसानों को लेकर, एक

0: पारदर्शिता है, उससे देश की खाद्य सुरक्षा और कैसे मजबूत हो रही है।
1: जैसा आपने बताया कि जो गेहूं और चावल है ये हमारा मुख्य भोजन का में हम लोग खाते हैं, और इस साल जो मार्जिन रखा गया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे वो 106% के जैसा अभी आपने बताया, और पिछले साल भी आप देखें तो 109% का इसमें मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन रखा गया था। तो लगातार सरकार वीट को भी प्राथमिकता दे रही है और उसको अधिक से अधिक इसमें किसान भाई को हमारा लाभ मिले उसका भी प्रयास रहता है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा। इस प्रोत्साहन का असर ये है कि पिछले साल 2025-26 में जो हमारी खरीदारी हुई है 350 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा हुई है
0: जी,
1: और उसके पिछले साल 2024-25 में लगभग 300 लाख मैट्रिक टन की खरीदारी हुई थी। और इसकी वजह से जो हमें फूड मिनिस्ट्री ने बताया है कि 1 अगस्त 2026 तक जो हमारा गेहूं का स्टॉक था वो 505 लाख मैट्रिक टन था, जो अब तक हाईएस्ट हुई है, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उससे हमारी एमएसपी से किसान भाई उसका अधिक से अधिक किस फसल को कर रहे हैं उसका उत्पादन कर रहे हैं, और इसकी वजह से हमारे देश की फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर हो रही है।
0: बिल्कुल, क्योंकि जो हमारा पब्लिक फूड डिस्ट्रीब्यूशन,
1: बिल्कुल।
0: अब हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे चने और जौ की फसलों पर बढ़ी एमएसपी को लेकर, क्योंकि सरकार का भी फोकस है जो हमारी मिलेट्स उसको बढ़ावा दिया। बात करें तो 136 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी और चने में 83 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी, जो कि हमारे खाने पीने में बड़े महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में इनका इस्तेमाल होता है, तो इनकी मांग को और किसान भी इन फसलों को लेकर उपजाने को लेकर प्रोत्साहित हो, कितना जरूरी है इन फसलों पर एमएसपी का बढ़ना?
1: देखिए, मतलब जैसा आपने बताया भी और सरकार दलहन को प्रोत्साहित तो कर ही रही है, उसके अलावा जो फसलें जिसका उत्पादन कम होता है उसको भी एमएसपी के माध्यम से उसको बढ़ावा देने का प्रयास रहता है। जैसे दलहन के लिए अभी मैंने बताया कि दलहन मिशन चल रहा है और उसकी एमएसपी भी अधिक रखी गई है बाकी फसलों की तुलना में। इसकी वजह से जैसे आपने चने का जिक्र किया तो इससे प्रोडक्शन पर भी असर पड़ता है। मैं जस्ट आपको आंकड़े बताऊं, 2024-25 में चने का प्रोडक्शन 111 लाख मैट्रिक टन हुआ था, जो 2025-26 में बढ़कर 125 लाख मैट्रिक टन हो गया है। इससे क्या होता है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है, एमएसपी अनाउंस होती है जो, और प्रोत्साहन के जो हमारे स्कीम्स होती है, से दलहन की प्रोडक्शन बढ़ाने में निश्चित तौर पे उसका इम्पैक्ट हो रहा है, उस पर उसका असर पड़ रहा है। जैसे आपने बार्ली का जिक्र किया तो बार्ली में हमारा जितना रिक्वायरमेंट है देश में उतना उत्पादन नहीं होता है
0: जी।
1: हमारी इम्पोर्ट पे निर्भरता है और इस निर्भरता को कम करने का एकमात्र माध्यम यह है कि आप अधिक से अधिक उस फसल को प्रोत्साहित करें। इसी क्रम में बार्ली का एमएसपी 136 रुपये बढ़ाया गया है, जो 58% हमारे साथ फिक्स किया गया है।
0: जब हम एमएसपी की बात करते हैं तो हमें 2018-19 का केंद्रीय बजट की सरकार की वो प्रतिबद्धता याद आती है, समर्थन मूल्य है वो फसलों का 1.5 गुना स्वीकृत मंजूर होना चाहिए और उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर ही होना चाहिए। तो सरकार की जो ये प्रतिबद्धता थी और उसको लगातार सरकार ने पूरा भी किया है, आप कैसे देखते हैं सरकार की इस कमिटमेंट को? और जिस तरह से हमेशा ही केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों में हमने देखा है कि समय समय पर एमएसपी को लेकर बढ़ोतरी की जाती रही है समय की मांग के हिसाब से, और साथ में जो किसानों की आय है उसको लेकर कैसे इससे स्टेबिलिटी आई है, स्थायित्व आया है कि लगातार किसानों को उनकी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी है उसको न सिर्फ बरकरार रखा गया है बल्कि बढ़ाया भी गया है।
1: जो बजट में अनाउंसमेंट हुआ था 2018-19 में, 1 फरवरी 2018 को अनाउंसमेंट हुआ था कि एमएसपी अब जो फिक्स होगी वो कम से कम लागत मूल्य पर 50% मुनाफे के साथ ही फिक्स होगी। उसके बाद से जितनी एमएसपी फिक्स हुई है वो लागत मूल्य पर कम से कम 50% मुनाफे के साथ ही फिक्स की गई है। मैं इसका आपको बैकग्राउंड बताऊं कि ये जो रिकमेंडेशन स्वामीनाथन कमेटी का काफी जिक्र होता है, उसमें भी इस चीज का जिक्र किया गया था कि भाई जो एमएसपी फिक्स होती है वो लागत मूल्य पर कम से कम 50% मुनाफे के साथ होनी चाहिए। तो उसको गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है और इससे आप देख सकते हैं कि लगातार उसके बाद से एमएसपी में काफी वृद्धि हुई है और प्रोक्योरमेंट खरीदारी भी बढ़ी है, और जो एमएसपी का पैसा किसान के खाते में जाता है उसमें भी काफी वृद्धि हुई है। इससे किसान की इनकम को बढ़ाने में काफी मदद मिली है।
0: बिल्कुल, और जैसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के ये फैसले आए हैं रबी फसलों को लेकर, तो जैसे किसान अपनी हमेशा योजना तैयार करते हैं कि कौन सी फसल की बुआई करनी है, तो अब फसलों को

0: लेकर पर कितनी बढ़ोतरी हुई, इतने रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है, तो ऐसे में किसानों को कितनी सहायता होती है ऐसे निर्णयों से?
1: भारत सरकार हर साल चार बार एमएसपी अनाउंस करती है, एक खरीफ की, दूसरी रबी की, उसके बाद कोपरा और जूट की एमएसपी अनाउंस होती है। जो एमएसपी अनाउंस होती है उस सीजन से पहले की जाती है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि खरीफ की एमएसपी इस साल मई में अनाउंस हो गई थी, खरीफ सीजन से पहले। रबी की एमएसपी 30 सितंबर को अनाउंस हो गई है। हम सबको पता है कि 1 अक्टूबर से रबी स्टार्ट होता है, तो एमएसपी जो सरकार अनाउंस करती है वो सीजन स्टार्ट होने से पहले करती है। इससे क्या होता है कि किसान भाई हमारे अपने फसल के बारे में सही फैसला ले पाते हैं कि किस फसल को हम ज्यादा प्राथमिकता दें, किसी को कम दें, किसको प्राथमिकता देने से उनको अधिक लाभ मिलेगा। इससे किसान को अपने डिसीजन लेने में काफी मदद मिलती है।
0: अब जैसे हम एमएसपी की ही बात करें तो जो हमारा कंज्यूमर मार्केट है उसमें अक्सर उसको लेकर लगातार उतार चढ़ाव होते हैं। हो सकता है कभी कभार महंगाई की वजह से या दूसरी कई वजहों से, चाहे वो आटा हो, दाल हो, लेकिन ये कितना जरूरी है कि किसानों को पहले ही उसकी गारंटी मिल जाए उसकी फसल की? जैसे गेहूं को लेकर ही हम अगर उदाहरण लें तो गेहूं की 25 रुपए की प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है, तो ऐसे में किसान किस तरह से आश्वस्त रहता है अपनी फसल के उत्पादन को लेकर एमएसपी की वजह से कि उसको उसके फसल का मूल्य पहले ही मिल रहा है? तो इस बारे में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को अगर आप बता सकें।
1: जैसा कि मैंने बताया कि एमएसपी सीजन शुरू होने से पहले ही अनाउंस हो जाता है, तो उसमें किसान अपनी फसल के बारे में उचित फैसला पहले ही कर लेते हैं। जहां तक गेहूं का आपने जिक्र किया है, तो गेहूं का प्रोडक्शन हमारा लगातार बढ़ रहा है और इससे इसमें हमारी खरीदारी भी काफी बढ़ रही है। इससे क्या हो रहा है कि जो किसान को अपनी फसल का, खासकर गेहूं का, उचित मूल्य इनको मिल रहा है और फूड सिक्योरिटी भी हमारे देश की इंश्योर हो रही है। और एक और चीज आपने पूछा कि इससे एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो एमएसपी अनाउंस होती है मार्केट में एक बेंचमार्क प्राइस फिक्स हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: उससे क्या होता है कि आप देखेंगे इन सारी जो एमएसपी की फसलें हैं उनका मार्केट प्राइस भी उसी के आसपास ही रहता है। अभी हम लोगों ने गेहूं और मैं पैडी की बात करूं, उसमें धान की बात करूं, इसका पिछले 10 साल का हम लोगों ने डेटा को एनालाइज किया था और हम लोगों ने देखा कि जो एमएसपी है उसी के आसपास ही उसका मार्केट प्राइस भी है। बहुत ज्यादा वेरिएशन उसमें नहीं है, ऑलमोस्ट लगभग सेम है। तो इससे क्या होता है जो एमएसपी अनाउंस होती है और खास करके गेहूं और धान की, इसमें मार्केट प्राइस भी स्टेबलाइज होता है।
0: अब सरकार का जैसे कि आपने भी बताया कि ध्यान फसलों के डाइवर्सिफिकेशन पर है, गेहूं चावल के अलावा तिलहन दलहन जैसी फसलों को लेकर एमएसपी पर सरकार का ध्यान है और उनके प्रोडक्शन और उनके प्रोत्साहन पर सरकार फोकस कर रही है, तो हमारे देश में जो एक क्रॉप साइकिल है या हिंदी में कहें फसल चक्र है या जो हमारी मिट्टी की उर्वरा क्षमता है, तो उसकी बेहतरी के लिए कितना जरूरी है कि जो दूसरी फसलें हैं उनकी तरफ किसान रुख करें और एक वैकल्पिक फसलों के तौर पर अपने खेतों में उनको उपजाएं, तो कितना जरूरी है तिलहन दलहन जैसी फसलों के उत्पादन को लेकर ये प्रोत्साहन?
1: निश्चित तौर पर देखिए क्या होता है कि आप अपने खेत में एक ही फसल को आप उसको प्रोड्यूस करेंगे उगाएंगे, तो उसका असर उसकी जमीन की उर्वरता पे भी पड़ता है। वहां पर फर्टिलिटी भी काफी उसकी डिस्टर्ब होती है। ये चक्र हमारे देश में नेचुरली बन रहा। आप देख लें कि गेहूं और धान के अलावा जो एमएसपी बढ़ रही है हमारी दलहन और तिलहन की, इससे किसान भाई को प्रोत्साहन मिल रहा है कि वो दलहन तिलहन की खेती भी वो ज्यादा से ज्यादा करें और वो कर भी रहे हैं। और इन दो फसलों दलहन और तिलहन की हमारी इंपोर्ट पर निर्भरता भी है। इससे क्या होता है कि जो अभी आपने जिक्र किया कि उसकी फर्टिलिटी पे क्या असर पड़ेगा, तो जब अलग अलग फसल हमारे किसान भाई ग्रो करेंगे तो निश्चित तौर पर एक बैलेंस बना रहेगा। तो बार बार अपना एक जिक्र होता है कि भाई उसका ऐसा कुछ ना हो कि ऐसी फसल ही आप ग्रो करते जाएं कि उसकी फर्टिलिटी ही बिल्कुल खराब हो जाए। तो जब ये चक्र बना रहेगा तो फर्टिलिटी भी उसकी बैलेंस रहेगी।
0: अगर हम जो सरकारी खरीद की बात करें गेहूं की फसल को खासतौर पर अगर हम लें, तो हमारे पास बड़े बेहतरीन आंकड़े हैं। जैसे 2004 से 14 के बीच में अगर गेहूं की सरकारी खरीद को हम देखें तो ये जो लगभग पहले इसमें जो बढ़ोतरी हुई है वो 50% से ज्यादा है। तो आप कैसे देखते हैं कि जो सरकारी खरीद बढ़ती है जब किसी फसल की, तो उसमें सरकार का जो प्रोत्साहन दिया जाता है खासतौर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का, उसकी बढ़ोतरी का वो कितना महत्वपूर्ण रोल निभाता है?
1: देखिए अभी आपने जिक्र किया कि पिछले 10 सालों में खरीदारी में क्या असर पड़ा, मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा कि 2004 से

0: के बीच में गेहूं की जो 2014 से 26 के बीच में बढ़कर के 37 करोड़ 15 लाख मैट्रिक टन हो गया है। दलहन की बात करें तो 4 से 14 के बीच में 6 लाख 29 हजार मैट्रिक टन था, जो बढ़कर के 2 करोड़ 20 लाख मैट्रिक टन हो गया है, 35 गुने की वृद्धि हुई है। इससे आप साफ देख सकते हैं कि जो खरीदारी है हमारी दलहन की पिछले 10 सालों में काफी बढ़ी है।
1: बिल्कुल।
0: और तिलहन की बात करें तो 2004 से 14 के बीच में 47 लाख 75 हजार मैट्रिक टन की खरीदारी हुई थी और 14 से 26 के बीच में 1 करोड़ 58 लाख मैट्रिक टन की हुई है, 3.3 गुने की वृद्धि हुई है। तो तिलहन का में भी खरीदारी हमारी काफी हुई है। तो इन दोनों फसलों को, दलहन और तिलहन को, हमारी एमएसपी के माध्यम से काफी बढ़ावा मिल रहा है और खरीदारी भी हो रही है।
1: बिल्कुल। तो अगर किसानों के फसलों के उपजाने के को लेकर उनके कॉन्फिडेंस को देखें तो वो कितना बढ़ा है इससे, क्योंकि आपने जैसा कि आंकड़े भी शेयर किए, और जब आंकड़े होते हैं तो निश्चित तौर पर किसानों को उसका सीधा लाभ भी उनके आर्थिक मोर्चे पर भी होता ही है। तो कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है अब किसानों का इन अलग अलग तरह की फसलों को उपजाने में?
0: देखिए, इसमें कुछ आंकड़े जो अभी आपके पास हमने रखे दलहन और तिलहन की, तो काफी खरीदारी, इससे साफ साफ दिख रहा है कि इन फसलों की तरफ हमारे किसान भाई का झुकाव भी हो रहा है और इसकी सरकार खरीदारी भी कर रही है। जहां तक विश्वास की बात करें तो मेरा अपना मानना है कि एमएसपी अनाउंसमेंट की प्रतीक्षा किसान भी करते हैं, और सरकार की भी प्राथमिकता रहती है कि वो सीजन शुरू होने से पहले ही अनाउंस कर दें, जिससे किसान को हमारी एमएसपी के बारे में जानकारी रहे और अपने फसलों के बारे में सही वो डिसीजन ले सके। निश्चित तौर पे किसान का भरोसा तो एमएसपी पर है और प्रिक्वायरमेंट भी काफी हो रहा है और प्रोडक्शन भी हमारा बढ़ रहा है।
1: तो अगर हम किसानों के आर्थिक लाभ की बात कर ही रहे हैं तो गेहूं किसानों की अगर मैं बात करूं, आपने भी एक आंकड़ा शेयर किया था कि कैसे 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक इजाफा हुआ है किसानों, गेहूं किसानों की जो एमएसपी में बढ़ोतरी हुई है और उसका आर्थिक लाभ जो किसानों को मिला है। तो आंकड़ा ये है कि 256 लाख करोड़ रुपए से लेकर ये बढ़कर 731 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। तो इतनी बड़ी मात्रा में, यानी हम कहें तो दोगुने से भी ज्यादा का एक आर्थिक लाभ किसानों को सीधा मिला है, ये कितना महत्वपूर्ण है, कितना बड़ा आंकड़ा है?
0: जो दो आंकड़े आपने रखे हैं, इनफेक्ट पहला आंकड़ा आपने 2004 से 14 के बीच का था और दूसरा आंकड़ा 2014 से 26 के बीच का था, तो इसमें जो वृद्धि हुई है जो मैं देख पा रहा हूँ वो 3 गुने की वृद्धि हुई है। तो 3 गुना लाभ हमारे किसान को मिला है और ये उनके अकाउंट में गया है, तो उनके इनकम को बढ़ाने में भी काफी मदद मिली है। इसी संदर्भ में मैं आपको दो और आंकड़े बताना चाहूंगा कि 2004 से 14 के बीच में और दलहन खरीदारी में 1900 करोड़ रुपए का भुगतान किसान के खाते में हुआ था, और वहीं 14 से 26 के बीच में देखें तो 1,25,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है और ये 65 गुने ज्यादा है। तो इससे आप देख सकते हैं कि दलहन की जो खरीदारी हुई वो भी ज्यादा हुई है, और क्योंकि एमएसपी लगातार बढ़ रही है इसलिए उसका लाभ भी हमारे किसान भाई को अच्छा मिल रहा है। इसी संदर्भ में मैं तिलहन का जिक्र करूं,
1: बिल्कुल,
0: तो 2004 से 14 के बीच में 9000 करोड़ रुपए का भुगतान किसान भाई को हुआ था और वहीं 14 से 26 के बीच में 86000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है, तो 9.3 गुने की वृद्धि हुई है। ये सारे जो भुगतान हो रहे हैं इससे किसान को लाभ मिल रहा है और उससे किसान की इनकम बढ़ाने में भी काफी मदद मिल रही है।
1: बिल्कुल। तो यानी कुल मिलाकर गेहूं, चावल, ये गेहूं के अलावा जो 6 बड़ी रबी फसलें हैं इनमें भी आंकड़े को हम देखें तो 265 लाख से बढ़कर 831 लाख का ये हमारे पास आंकड़ा है। ये जो बढ़ते हुए आंकड़े हैं ये किस तरह से आप इन्हें देखते हैं और कैसे जो एक पूरा तंत्र है, कृषि तंत्र, उसमें जो खासतौर पर ये बात सरकार की ओर से कही जाती रही है कि किसानों को जो आर्थिक आय है या उनका जो इनकम है उसमें किसानों को प्रोत्साहन मिले और लगातार उसमें बढ़ोतरी हो, तो किस तरह से ये पूरा होता हुआ दिख रहा है और ये लगातार प्रक्रिया?
0: दो बिंदु हैं जिसके जो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो 2018-19 में जब अनाउंसमेंट हुआ था बजट में कि एमएसपी कम से कम 50% मुनाफे के साथ ही फिक्स की जाएगी, उसके बाद क्या हुआ है कि एमएसपी कभी भी 50% कपे तो फिक्स हुई नहीं है। इससे क्या होता है, एमएसपी में काफी बढ़ोतरी हुई है। पहले क्या था कि कुछ फसलों की, 2018-19 से पहले की बात करें तो कुछ फसलों की एमएसपी जो फिक्स होती थी वो लागत मूल्य पर 50% नहीं भी मिलता था। एमएसपी में एक तो लगातार वृद्धि हो रही है और जो खरीदारी हो रही है उसमें भी लगातार वृद्धि हो रही है। ये सारे जो अमाउंट पैसा जा रहा है अकाउंट हमारे किसान के खाते में जा रहा है पहले, अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था है उसमें भी

0: काफी सुधार हुआ है।
1: बिल्कुल,
0: अभी जो एमएसपी का पैसा है वो किसान के खाते में जा रहा है, वो आधार से लिंक किया हुआ है,
1: डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के,
0: हाँ, डीबीटी के थ्रू जा रहा है, तो इसमें अब बिल्कुल किसान को डायरेक्टली उसका फायदा मिल रहा है, तो इससे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसमें भी काफी सुधार हुआ है।
1: एक प्रश्न हम अपने श्रोताओं की समझ के लिए, जानकारी के लिए आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो उसका तय करने का वैज्ञानिक आधार क्या है? क्या इसका आधार यही है कि जैसे किसानों की लगातार बढ़ती हुई बीज की, खाद की, मशीनरी की, या जो मजदूरी या श्रम की लागत है वो जैसे जैसे बढ़ती है तो किसानों को उसी तरह से उस आधार पर उसका लाभ दिया जाता है, तो कैसे तय?
0: हम लोगों ने काफी जिक्र किया कि एमएसपी लागत मूल्य पर कम से कम 50% मुनाफे के साथ फिक्स की जाती है, तो जो लागत मूल्य है उसमें जो उसके कंपोनेंट है उसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो किसान उस फसल को उगाने में जो भी खर्च करता है वो सारे खर्च इसमें जोड़े जाते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं कि जो लेबर हायर किया किसान ने, जितना खर्च किया उस फसल को उगाने में उसको काउंट किया जाता है। यदि किसान ने अपना वो लेबर अपने घर से यूज किया और घर के लोगों ने श्रम दिया हुआ है उसका भी इम्प्यूटेड वैल्यू जो अपना लेबर कॉस्ट है वो भी ऐड किया जाता है। यदि मशीनरी किसान ने हायर किया है उसका खर्चा भी ऐड होता है। यदि मशीनरी खुद की है तो उसका खर्चा भी उसमें ऐड होता है। और सीड्स पे जो खर्च हो रहा है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड में जो खर्च हो रहा है, फर्टिलाइजर पे खर्च हो रहा है, ये सारे खर्चे उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जुड़े जाते हैं। एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिए कोई किसान जमीन लीज पे लिया हुआ है,
1: जी जी,
0: तो उसका खर्चा बहुत आता है।
1: बिल्कुल,
0: तो यदि कोई किसान लीज पर लेकर खेती कर रहा है तो उसमें जो लीज का कॉस्ट होता है वो भी उसमें ऐड किया जाता है, और इरिगेशन है, बाकी जो कंपोनेंट मैंने बताया वो तो सारे खर्चे जोड़े ही जाते हैं इसमें।
1: और जैसे जो छोटे और सीमांत किसान है, क्योंकि अगर किसी के पास बड़ी जमीन है तो उसमें से तो अगर ज्यादा फसल की पैदावार होती है तो उसका एक एवरेज कॉस्ट निकल जाता है, लेकिन जो खासतौर पर छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, उनको अगर एमएसपी मिलता है तो उनके लिए कितनी बड़ी एक गारंटी होती है, कैसे उनके लिए आर्थिक प्रोत्साहन होता है?
0: मैं थोड़ी प्रक्रिया और
1: बिल्कुल
0: बता देता हूँ।
1: बिल्कुल,
0: कि जो हम लोग इसका आंकड़ा इकट्ठा होता है इसमें हम लोग गांव में जो प्लॉट्स होते हैं तो उसमें तीन कैटेगरी में प्लॉट्स डिवाइडेड होते हैं जिससे कि डेटा इकट्ठा होता है। पहला कैटेगरी है कि एक हेक्टेयर से कम वाले प्लॉट कौन कौन से हैं, एक से दो हेक्टेयर वाले प्लॉट कौन कौन से हैं, और दो हेक्टेयर से ज्यादा वाले कौन कौन से हैं। तो जो आंकड़े इकट्ठा होते हैं वो तीनों कैटेगरी से होते हैं। तो इसमें जो एक हेक्टेयर से कम वाले जो कैटेगरी है इसमें हमारे छोटे किसान में जो खर्च हो रहे हैं वो सारे उसमें काउंट हो जाते हैं। और जो एमएसपी है उसका लाभ हर किसान लेता ही है, जैसा कि आपको हम सबको मालूम है।
1: बिल्कुल, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो अब खेती का तरीका है वो एक तकनीकी तौर पर अब अलग होता जा रहा है, उन्नत और स्मार्ट खेती की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ऐसे में निश्चित तौर पर हमें खेती में बहुत सारे उपकरणों की भी जरूरत होती है, तो किसान अपनी लागत को पूरा कर सके, उपकरणों के खर्च को पूरा कर सके, ऐसे में लगातार जो उनको प्रोत्साहन है वो एमएसपी के जरिए बढ़ोतरी के रूप में दिया जाता रहा है, वो भी क्या इनमें जोड़ा जाता है उनके खर्च को भी?
0: जैसा कि मैंने बताया कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें किसान जो भी खर्च करते हैं वो सारा कॉस्ट उसमें जोड़ा जाता है। अभी आपने मशीनरी का जिक्र किया, मान लीजिए कि आपके पास ट्रैक्टर नहीं है, आप उसको हायर करते हैं मार्केट से,
1: बिल्कुल,
0: तो जो आपका हायरिंग कॉस्ट है वो इसमें इंक्लूड किया जाता है। मान लीजिए आपके खुद का मशीनरी है उसको आप यूज कर रहे हैं, उसका वैल्यू भी उसमें ऐड किया जाता है। तो जो भी मशीनरी हमारा किसान यूज करते हैं उसका खर्च इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एडेड रहता है।
1: तो अब कार्यक्रम में हम अंत पर बढ़ रहे हैं, आखिर में हम आपसे यही समझना चाहेंगे अपने श्रोताओं की जानकारी के लिए, जैसे ये फैसला रहा इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल का और समय समय पर केंद्रीय कैबिनेट के फसलों के एमएसपी को लेकर फैसले भी आते रहते हैं, कैसे हमारे देश का जो बफर स्टॉक है वो बिल्कुल स्थिर रहे, बढ़ोतरी होती रहे उसमें, और साथ में खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित होते रहे, किसानों की आय भी लगातार बढ़ती रहे, इन तीनों कॉम्पोनेंट्स के हिसाब से एमएसपी का ये प्रोत्साहन कितना जरूरी है और सरकार इस ओर कितना ध्यान दे रही है?
0: देखिए, इसमें जहां तक फूड सिक्योरिटी की बात है इसमें गेहूं और धान में तो हमें कोई इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है,
1: उसमें तो आत्मनिर्भर हैं हम पूरी तरह से,
0: और जिसमें हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है दलहन और तिलहन में उसमें भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि एमएसपी में भी लगातार वृद्धि हो रही है, उसमें जो भुगतान हुआ है वो भी काफी ज्यादा हुआ है,

0: और हमारे पल्सेज मिशन भी चल रहे हैं और तिलहन मिशन भी चल रहे हैं, इनके माध्यम से भी बढ़ावा दिया जा रहा है और इससे हम लोग, मुझे पूरा भरोसा है कि भविष्य में हमारे किसान भाई इन सारी फसलों को प्राथमिकता देंगे, इसको अधिक मिलेगा जिससे उनका इनकम बढ़ाने में भी काफी मदद मिलेगी और देश को भी इन फसलों पे आत्मनिर्भर होने में मदद मिलेगी।
1: बिल्कुल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में एमएसपी के अपर महानिदेशक डीपी श्रीवास्तव जी, बहुत धन्यवाद आप कार्यक्रम में जुड़े। और केंद्रीय कैबिनेट का जो हाल ही में रबी की फसलों को लेकर एमएसपी की जो मंजूरी है और साथ में किस तरह से लगातार किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस का प्रोत्साहन और बढ़ोतरी के रूप में सरकार द्वारा विभिन्न फसलों पर दिया जाता रहा है और उसमें लगातार और बढ़ोतरी होती जा रही है, इस पर आपने विस्तार से हमारे श्रोताओं को इस चर्चा के माध्यम से समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे रबी फसलों के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में एमएसपी के अपर महानिदेशक डीपी श्रीवास्तव और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।